गले जाने के लिए चाहिए मोई। गले जाने के लिए चाहिए मुआ गीती गले ये मुआ का गीती जानू है। गला गया लगे इसको लेता था कि मैं आऊँ यो गले मुझे को साई कल हुई है जनाते का मैं आगा पिसा कल तातु अस्ती जो आरसे इंगे तत्काना पे इन ऐसा पे गुए ने अन्य को जे मो लगी काले किचेंगे पका पो किचेंगे चिकले फका पुएरी यानी एगा से की नो मुगुले दंगु गो इरो बाय द वे एंगा लेगा अब जाम ये को करो गासी ते यानी का से ने लगो या मुगुले दने ई मिने ngal ई मिने ने ngal लेगा मपेंस ये Utinga ni le tertar ya de tertar tertar gae ni ni ne ya ni got ke lak te ne ya ni got ke lak te ne I buate che a che ne o si te met buana go mi la ndu go le lakini gi gonde bi so la ni go le ko kwenta ni

कुछ चीज लंबा ना रोग कुछ चीज लंबा किसी आगे भी एक चाहते जब लंबा ना खुरु खाऊंगी बी का लंबा गिरेंगे तो जो रोनो का लंबा इन किप थोरो बी का लंगरुआनी 104.0 सेम इन अपिक अकेले अमाउंटिंग बी का लंबा ना अंडगरा जेदियों ने 104.0 बी का लंबा का टू मोर Juro no gabu lamba kirijo area 102.2 Gole ne big chibo lamba kibke liado Big abu lamba chibze ona Big abu chibzir fo tenana Juro no gabu lamba kibzir te teriaza Zoliad kona

आवाज आवे भाई मगर यो तो जित मनानो उद गद जोंगी लगने लगी मत खाओ अच्छा वे इन लोगों रोम गासित करा इन लोगों रोम गासित करा अनिवार्य के गिल गए इन लोगों तब मनानो को तो गुगो ना ब्रह्मोशन किडो को इन मगर यह आता है इन लोगों ये इस तब मनानो को तो स्वान की भागी किडो को इन मगर यह आता है इन मती नवन ने गाबिस अराव को तमन है सुवांगा भाई मगर यह आता है जिनको लोगों ने मत